भाईला कहीं हो वल्लम बेले के मितिले की उस का मित्र कंग का मित्र किंजी खेजे तुलेस गे न कि अंकिर सिंह बरम को कितल दाम बेले से कृषिंग उड़बा न कि मित्र ने अर बलंग न भी गल किंग के लजे तो वाले बंग न दो बम इंगा सम बलम कि मित्र आए बेले मित्र ते बेले अब कुयों के रिंग बेले अलबास आप पांडियो के अब कुयों के रिंग बेले अलवा सापान दियो के एम्बेले ऐसे टाइम वो जुन्दे एम मिथिल लोगे ने नंबर मिथिल होई ने इंग ऊन से ने नंबर भी काऊं क्या दल्ले कहाँ तो इंद्रियं का गिला अब मधिल भी हो न क्यों को आखी के इंग मात्र मन्यां के खेले के यानी अं की के इंग कमलं खेले वाला गलची कुं क्या दौरा दल्ले बैंगे ने क्या कुंडला क्या दौरा दल्ले खेले तुम्हारा कमला कव्या रहीता वो लगल ब्रिंजलन दियो कौन जेल बस जरूर ने जुरो लिया नू क्या आप बाकेला आयलों ना कोबरों आय कोवल कांगम में आ कांगल के बना आमल बदई ना दो हाथ ऐ आले ने बोले अब नू आमे बांग ओम बा कौन जारों आ कि नमोस उरों आ नमो कोते मो मुखियों में से देलो कुयों कसल ना आस से देलो आसा marang belen sele u alba dayang u kuwa ba inalay aba kweti aba demba na dem warren kwa ila bele si dios ka imba yapi ba ila ingi na kain si nas iti na ila bele si ikirin tubung kurasing arir ba ila ingi nas yisika mingalang inaampia na ikal kel amna keng apang inalang kirsing ye namas inalang tuiti marang ki namo ko te anan de ar kheren namo do incoming asa pa asa ke mota de tinge na pi na kuyo ma sa ke mota de tinge na pi marang na ara in ara kana ba kuyo ma sa asan koi ab ki de ara in kana kuyo ma sa asan koi na asa kuyo ma ja koi elain na de koi na kirok mande ara in karang kuyong albayen asa indir. Thank you.